0: Radio 2098.5 FM Community Program.
1: Samajik Hindi Karyakram Darpan Akashvani 2098.5 FM.
0: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements.
1: Swagat hai Darpan Hindi Karyakram mein. Aap sunenge samachar, vichar, sangeet aur samajik suchnaye.
0: Radio 2098.5 FM, Multicultural Radio.
2: Aaj ravivar, युगा 5126 कलयुग विक्रम संवत 2083 श्रवण मास की शुक्ल चतुर्थी 16 अगस्त 2026 है। दर्पण के सुनने वाले सभी श्रोताओं को भारत की 80वीं वर्षगांठ की दर्पण परिवार की ओर से बधाई व पूनम की नमस्ते। आज के समाचार इस प्रकार हैं। पीएम मोदी ने देश की 80वीं स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए सप्त सिंधु का खास तौर पर जिक्र किया। भारत की 80वीं वर्षगांठ के इस अवसर पर उन्होंने देश के सामने सप्त शक्ति का नया विचार रखा। पीएम ने कहा कि भारत प्राचीन सप्त सिंधु सभ्यता का देश है। जिस तरह प्राचीन काल में सात नदियों के प्रवाह ने भारत को समृद्ध, खाद्यान्न से परिपूर्ण और सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाया, ठीक उसी तर्ज पर आज भारत को आधुनिक वैश्विक मंच पर शीर्ष तक पहुंचने के लिए सात नई शक्ति धाराओं के एकीकृत प्रवाह की आवश्यकता है। इसी विचार के आधार पर पीएम ने भविष्य के भारत के लिए सात प्रमुख लक्ष्य तय किए हैं। इसी सप्त सिंधु का जिक्र कर भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से मिलता है। पीएम मोदी ने प्राचीन नदियों के इस एकीकृत प्रवाह से प्रेरणा लेते हुए आधुनिक भारत के लिए सप्त शक्ति का खाका तैयार किया। जिस प्रकार प्राचीन काल में सात नदियों के जल से देश को हर दृष्टि से संपन्न और मजबूत बनाया था, उसी प्रकार 21वीं सदी के भारत को आगे ले जाने के लिए सात नई शक्ति धाराओं की पीएम मोदी ने देश के विकास में जरूरी बताया है। इससे भारत आर्थिक, आधुनिक, तकनीकी, सैन्य और सामाजिक पंक्ति में दुनिया में सबसे आगे खड़ा हो सकेगा। नीट पेपर लीक विवाद के बाद उच्च शिक्षा सचिव की नियुक्ति की गई है। केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सीनियर ब्यूरोक्रेट दीप्ति गौर मुखर्जी को नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया है। सरकार ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सचिव विनीत जोशी का तबादला भी कर दिया। दीप्ति गौर मध्य प्रदेश की 1993 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। नीट पेपर लीक विवाद के बीच दीप्ति का नया उच्च शिक्षा सचिव बनाया जाना काफी अहम माना जा रहा है। उद्योगपति और अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी को अमरीकी कोर्ट ने से बड़ी राहत मिली है। अमरीका के न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अमरीकी न्याय विभाग पेश डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डीओजी की याचिका को स्वीकार करते हुए गौतम अदाणी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आपराधिक आरोपों को खारिज कर दिया है। कानपुर में एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में 50 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर गायब का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने बताया यह बैंक लॉकर 2003 में खुला था, लेकिन लंबे समय तक उसे चेक नहीं किया गया। चार महीने पहले जब इस लॉकर को चेक किया तो उसमें रखे जेवर गायब थे। पुलिस की खोज जारी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मध्य प्रदेश के सीहोर के सेठ जुम्मा लाल के परिवार द्वारा ब्रिटिश हुकूमत को दिए गए 35,000 रुपए वॉर लोन के मामले में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। वर्ष 1917 में सेना के खर्चों के लिए दिए गए इस कर्ज की देनदारी को लेकर ब्रिटेन सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है और परिवार से इस मामले से जुड़े तमाम दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कहा है। जुमालाल के बेटे और पोते ने ब्रिटिश सरकार के डेट मैनेजमेंट ऑफिस को लीगल नोटिस भेजा था। इस नोटिस के औपचारिक जवाब में यूके सरकार ने मामले को खारिज करने की बजाय आगे जांच की बात की है और दस्तावेजों को लंदन स्थित गिल्ट रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत करने को कहा है। राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने पंजाब में बढ़ती नशे की समस्या को लेकर आवाज उठाई। उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर संसद तक इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए कहा कि राजनीति छोड़कर पंजाब को ड्रग मुक्त कराने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे नए पीढ़ी के ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी NGOVP में से एक पोत श्रुति का 11 अगस्त को जलावतरण किया गया। यह पोत लोग कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने बनाया है। इसका इस्तेमाल समुद्री निगरानी के लिए किया जा रहा है। ये पोत समुद्र में फंसे लोगों की तलाश और बचाव में मदद करेगा। समुद्र में मौजूद तेल प्लेटफॉर्म और दूसरी महत्वपूर्ण संपत्तियों की सुरक्षा भी इनकी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा के समय राहत और बचाव अभियान में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन एक बार फिर बौखला गया है। भारत ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों को उनके भारतीय नामों के साथ आधिकारिक नक्शे में शामिल किया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है। चीन दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। चीन अरुणाचल को तिब्बत का हिस्सा बताता है, लेकिन तिब्बत भी तो उसका नहीं है। तिब्बत पर उसने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। हमारे घर में रखे पुराने कपड़ों का आखिर क्या होता है? जो कपड़े बिल्कुल पहनने लायक नहीं रहते, वे लैंडफिल का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अगर इन्हीं पुराने कपड़ों को दोबारा इस्तेमाल होने वाला संसाधन में तब्दील कर दिया जाए तो तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसी सोच के साथ टेक्सटाइल वेस्ट को सकारात्मक आकार देने के लिए केवल नगर निगम ही नहीं बल्कि युवा डिजाइनर, महिलाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप और आम नागरिक भी जुड़ गए हैं। इसी सोच के सेक्युलर इकोनॉमी और वेस्ट टू वेल्थ से जोड़ा जा रहा है। पंजाब की राजनीति में एक बार फिर बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के संभावित गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हाल ही में SAD प्रमुख सुखविंदर सिंह बादल की PM मोदी से मुलाकात के बाद यह अटकलें बढ़ गई हैं। लगभग 6 साल बाद दोनों पुराने सहयोगी फिर साथ आ गए हैं। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मामला है कि यह राह उतनी आसान नहीं जितनी दिखाई देती है। झारखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं की जांच के बीच गिरफ्तार TDPL के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी ने CID के सामने पूरे मामले का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। उसने बताया कि अभ्यर्थियों को एजेंट और बिचौलियों के जरिए इस नेटवर्क तक पहुंचाया जाता था। अभय के अनुसार एक ऐसा नेटवर्क बुना गया कि प्रति अभ्यर्थी 15 लाख रुपए देकर इस परीक्षा में सफल हो सकता था। अभय ने बताया कि जिस सदस्य या अधिकारी के साथ सेटिंग होती थी उसी से जुड़े इंटरव्यू बोर्ड में भेजने की व्यवस्था की जाती थी। इंटरव्यू से पहले अभ्यर्थी को कोड डिकोड कराने की व्यवस्था भी की जाती थी। भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन गया है। भारत ने बहोर्स अग्नि जैसे घातक मिसाइल्स बनाई हैं जिससे दुश्मन कांपता है। भारत नए नए हथियार और मिसाइल्स तो बना ही रहा है, साथ ही अपनी पुरानी मिसाइल्स को भी अपग्रेड कर रहा है। भारत की Agni-5 मिसाइल की बढ़ती क्षमता की दुनिया भर में डिफेंस सेक्टर में चर्चा हो रही है। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल से ऐसा अपग्रेड किया है जिससे एक तीर से कई शिकार होंगे। चीन के डिफेंस एक्सपर्ट्स भी इस अपग्रेड को देखकर हैरान हैं। इस अपग्रेड के बाद हथियार आसानी से 10,000 किलोमीटर तक की रेंज को हासिल कर पाएंगे। आज के इस दौर में जब छोटे परिवारों का जमाना है, वहीं आंध्र प्रदेश से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी। अनंतपुर जिले के कुरापिल्ली गांव में रहने वाला नागप्पा परिवार आज भी संयुक्त परिवार की इस पुरानी भारतीय परंपरा को पूरी शान से जिंदा रखे है। कहने को यह परिवार पास पास में बने चार अलग अलग घरों में रहते हैं, लेकिन इनकी रसोई और इनका पूरा जीवन एक ही धागे में पिरोया है। इस परिवार में 83 सदस्य हैं, जिनमें 6 पीढ़ियां रहती हैं। परिवार की कमान 2 बुजुर्गों के हाथों में है। इस एक परिवार में 6 सास, 14 बहुएं और 20 बच्चे एक साथ रहते हैं। इतने बड़े परिवार के में व्यवस्था बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट आखिर 250 फीट नीचे कैसे आई? इतना भयानक टर्बुलेंस आखिर कैसे हुआ? कुछ ऐसी जानकारी सामने आई है जिससे सिर्फ पायलट के नशे में होने की वजह से फ्लाइट में यह स्थिति पैदा हुई। इस पर फिलहाल संशय बना हुआ है। जेट में टेक्निकल खराबी के बाद जांच से पता चला है कि प्लेन के पूरे कंट्रोल सरफेस ने 4 सेकंड के लिए पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। इसी वजह से भयानक टर्बुलेंस की स्थिति पैदा हुई। ब्लैक बॉक्स की जांच से पता चला कि जेट के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम में किसी तरह की खराबी के कारण उन 4 सेकंड के दौरान 8320 NEO में एलिवेटर और एरॉन बिना पायलट कमांड के ही अपना काम करने लगे। फ्लाइट ऑपरेशन में इस तरह की घटना पहले कभी नहीं देखी गई। NDTV से मिली जानकारी के हवाले से जेट के लैंड करने के बाद एयरलाइन में डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से पूरा डाटा डाउनलोड किया और उसे तुरंत एनालिसिस के लिए भेजा। तब से ही एयरबस और फ्रांस की जांच एजेंसी BEA के एक्सपर्ट नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उनकी विमान की जांच चल रही है। पायलट कैप्टन संदीप वशिष्ठ नशा टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। इस कारण इंडिया के एयर इंडिया एक्सप्रेस को के सभी पायलट्स को टेस्ट करवाने का आदेश दिया गया है। खेल समाचारों में इंडिया वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट टेस्ट मैच खेला गया। गोल इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रहे सीरीज के शुरुआती मुकाबले के पहले दिन ही भारतीय टीम मजबूत स्थिति में है। दूसरे सेशन का खेल जारी है। भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला बेहद खास है क्योंकि शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया अपने टेस्ट इतिहास का 600वां मैच खेल रही है। फिल्मी दुनिया। स्वतंत्रता दिवस पर बंटवारा 1947 और आवारापन 2 के बीच बॉक्स ऑफिस पर कड़ा मुकाबला जारी है। यहाँ एक तरफ आइकॉनिक किरदार शिवन पंडित की पर्दे पर वापसी हुई है और दूसरी तरफ राजकुमार संतोषी और सनी देओल की सुपरहिट जोड़ी एक नए ऐतिहासिक ड्रामा के साथ फिर से साथ आई है। नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी आवारापन 2 में इमरान हाशमी के साथ दिशा पटानी, शबाना आजमी और सुखविंदर विक्की हैं। दूसरी ओर बंटवारा 1947 असगर वजाहत के प्रसिद्ध नाटक जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जमियाई नहीं पर आधारित है। फिल्म विभाजन के दौर की कहानी है। इस फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, अली फजल, करण देओल और शबाना आजमी मुख्य कलाकार हैं। दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 57,170 रुपये प्रति 10 ग्राम है। डॉलर की विनिमय दरें इस प्रकार हैं। अमरीकी डॉलर 95 रुपये 45 पैसे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 67 रुपये 5 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त हुए।
3: श्रोताओं, आज आप अपना दर्पण हिंदी रेडियो प्रोग्राम सुन रहे हैं। आपने पूनम जी की मधुर आवाज़ में समाचार सुनी लिए हैं। हमारे साथ में डॉक्टर राजे भी आ गए हैं और हमारे आज खास मेहमान भी हैं और उन खास मेहमानों का परिचय हमारे अजय जी कराएंगे। लेकिन पूनम जी, आज जी, का विचार क्या है?
2: जी, आज का विचार मैंने रेखा राजवंशी जी के ही विचार से लिया। बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने। करते शत शत नमन आज आज़ादी के दीवानों को देश की खातिर कर डाला न्योछावर अपने प्राणों को, फांसी हुई या जेल गए या चले गए काला पानी, कैसे भुला पाएं उन वीरों की बलिदानों को। आज़ादी सिर्फ एक शब्द नहीं, हजारों सपनों और कुर्बानियों का नाम है। 15 अगस्त गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं। चलो फिर से वही नारा लगाएं, भारत माता की जय। 15 अगस्त की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: बहुत अच्छा विचार, आज का समय अनुकूल हो गया आपका
2: जी।
3: तो आज कल जैसे हम लोग बात कर रहे थे, एक मैंने भजन ऐसा लिया है
2: जी,
3: शायद वो काफ़ी पॉपुलर भी है, लेकिन इसकी कुछ खास बातें जो बिल्कुल यूनिक है, पहली बार हम दर्पण में बजा रहे हैं
2: जी।
3: हम हमारे आज दो पहली भी होंगी, और उस तो हम 5 टिकट देने वाले हैं, एक हमारा शो होने वाला लोकल, उसके बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे, और एक है हमारा पहली बंटवारा फिल्म जिसके बारे में आपने बताया था, तो उसमें एक जीतने वाले को पास मिलेगा जिसमें 2 लोग जा सकते हैं। डॉक्टर साहब आप कैसा फील कर रहे हैं ये जो विनर के लिए?
4: हाँ बहुत अच्छी बात है, आज जो लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे सवालों का जवाब दे,
3: हाँ जुड़ने का हाँ जा। तो हम बताएंगे कि आप वो 5 टिकट कैसे ले सकते हैं, डॉक्टर साहब थोड़ी देर में आपको बताएंगे, और बंटवारा फिल्म का हम बाद में ट्रेलर भी बताते हैं। तो एक जो नया भजन हम सुनवाते हैं, और देखिए उसमें आप पहचानिए कि क्या आपने इसमें नया है, इससे शुरुआत करते हैं, शायद यह भी एक पहेली का हिस्सा हो सकता है।

0: दर्पण रेडियो सुन रहे सभी श्रोतागण को प्यार भरी नमस्कार। क्या आप अपने प्रियजनों के लिए भरोसेमंद और स्नेहपूर्ण देखभाल की तलाश में हैं? श्री ओम के में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, गरिमा और घर जैसा माहौल देते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं इन होम केयर, डिसेबिलिटी केयर और डेमेंशिया व अल्जाइमर सपोर्ट, साथ ही स्पेशल सपोर्ट, एडवाइजरी सर्विसेज और संस्कृति व भाषा के अनुसार विशेष देखभाल। हम 24/7 असिस्टेड लिविंग, रजिस्टर्ड नर्सिंग, रेस्पाइट केयर और हेल्दी एजिंग एक्टिविटीज भी प्रदान करते हैं। हम माई एज केयर, NDIS और प्राइवेट केयर विकल्पों के माध्यम से आपकी पूर्ण सहायता करते हैं। श्री ओम केयर, जहां देखभाल परिवार जैसी लगती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 1300-908-681 या फिर वेबसाइट विजिट करें shriomk.org.au। धन्यवाद।
1: श्रोताओ, जैसे कि हमने बताया था कि हमारे साथ में आज काफ़ी मेहमान हैं और वो ऐसे मेहमान हैं जो अपने साथ में एक इतिहास लेके हमारे साथ में आए हैं। वो ऐसे मेहमान हैं जो हमारी आज़ादी जो 1947 में हुए उस समय उन्होंने देखा था। आज ये बहुत ही भावनात्मक माहौल है स्टूडियो में हमारे, उनसे हम बातें करेंगे। हमारे डॉक्टर साहब ने काफ़ी उनके लिए प्रश्न भी बनाए हैं, तो डॉक्टर साहब क्यों ना एक उनका परिचय हो जाए और आप बताइए कि क्या क्या उनके लिए प्रश्न लेके आए हैं, जिससे कि लोग जुड़ सकें उस क्षण से इन हमारे महान विभूतियों के

0: टर्बुलेंट टाइम थे उस टाइम पे, मतलब कोई खुशी का मौका होता है कि देश आज़ाद हुआ तो सब सेलिब्रेट करे, पर माहौल गम भी था वहाँ पे। तो ऐसा जो माहौल था उसको हमारे साथ में आज के जो हमारे अतिथि हैं उन्होंने उसको देखा, आँखों से देखा और उन कहानियों को कानों से सुना जो आज़ादी की खुशबू थी उसको छूंगा। तो हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि हमारे पास स्टूडियो में हैं संत राम बजाज जी, ब्रह्म शर्मा जी और तिलक कालरा जी। तो हम इनसे बात करेंगे उस ज़माने की। पर मैं चाहता हूँ कि भारत को आज़ादी जो मिली थी उसकी एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि में बता दूँ, तो मतलब कैसे शुरू हुआ भारत, कैसे अधीन हुआ फिर स्वाधीन हुआ। तो जैसे आपको पता है कि ये भारत का एक कंसेप्ट तो था और लोगों ने सुन रखा था यूरोप में कि एक भारत बहुत बड़ी सोने की चिड़िया है, तो लोग हमेशा वहाँ पे आते थे। तो सबसे पहले जो थे डच लोग आए
1: जी,
0: वो आए थे 1498 में। तो ये बेसिकली व्यापारी थे, पर उन्होंने व्यापार तक सीमित नहीं रखा अपने आप को। तो उनकी भी मंशा थी कि व्यापार भी करें और शायद देश पे अपना सिक्का भी जमाएं।
1: बिल्कुल।
0: तो पर जो डच थे वो मतलब गोवा कालीकट वहाँ पे रहे, फिर फ्रेंच आए और फिर उसके बाद में जो है ब्रिटिश लोग आए,
1: ईस्ट इंडिया कंपनी।
0: हाँ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मतलब सरकारी तौर पर नहीं थे, एक कंपनी बनी हुई थी उनके, बाकायदा स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड थी। और वो आए थे सबसे पहले सूरत में और साल था वो 1613। तो सूरत में छोटा सा उनको एक मतलब पैर रखने की जगह मिली, तो वहाँ से उन्होंने अपने अपने पैर जमाने शुरू किए। तो धीरे धीरे धीरे वो ट्रेड करते रहे और फिर उनको लगा कि जो यहाँ पे तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो उन्होंने लड़ी एक बैटल ऑफ प्लासी जिसको कहते हैं,
1: बड़ा मशहूर बैटल।
0: जी हाँ, तो वो हुई थी 1764 में। तो उन्होंने सिराजुद्दौला को उन्होंने पराजित किया और वहाँ पर उन्होंने ब्रिटिश राज इस्टेब्लिश किया, मतलब ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी का। और मतलब वो काफ़ी बंगाल का जो एरिया था बहुत ही प्रॉस्परस एरिया था, वहाँ पे जूट वगैरह की फार्मिंग होती थी। तो वहाँ से उन्होंने सिक्का जमाना शुरू किया। फिर जो है दक्षिण में टीपू सुल्तान से उनकी लड़ाई हुई, तो टीपू का रहा तो सारा दक्षिण उनके हाथ में आ गया। फिर उन्होंने जब मराठों को हराया तो मराठा अपने हाथ में आ गया, पूरा सेंट्रल एरिया। और आखिर में जो है जो सिख वॉर हुई थी, एंग्लो सिख वॉर, वो 1849 में उस वो जीत करके उन्होंने सारे भारत पर कब्जा किया। तो ऐसे भारत मतलब आ गया। तो फिर आया 1857, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी सब जगह बन गई, तो तब तक मतलब उन्होंने भारत को अधीन कर लिया था। उसमें क्या था, उनके पास बड़ी सेना थी, सेना में 300,000 सिपाही थे जो कि ज़्यादातर मतलब भारतीय थे। तो उनको मतलब खबर मिली, रूमर थी कि वो बड़े धार्मिक हुआ करते थे, हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, कि उनको कन्वर्ट किया, धर्म उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। और जो उनकी सैलरी भी कम थी और उनके साथ जो है ना प्रमोशन में भेदभाव भी किया जाता था, तो उन्होंने थोड़ी बगावत की, उसमें थोड़ी सी आग उनमें जल रही थी। तो एक आया वहाँ पे कि उनको नई राइफलें दी गई, पिस्तौल दी गई, एनफील्ड राइफल कहते थे। तो उस पर कहा कि जो है जो राइफल है उसको जो बारूद रहता है उसके अंदर पड़ता है तो मुँह से काटना पड़ता है, और उसके अंदर चर्बी गाय की और सुअर की दोनों की थी। तो ये हिंदू और मुसलमान दोनों थे, दोनों को भी कबूल नहीं था वो। तो वहाँ से बगावत भड़की। आपको पता होगा 1857 में जो म्यूटिनी कहते हैं वो जो मेरठ से शुरू हुई, और मेरठ में उन्होंने सिपाहियों ने बगावत करी और फिर दिल्ली तक पहुँच गई वो। और दिल्ली में उन्होंने बहादुर शाह जफर थे, उनको शहनशाह हिंदुस्तान जो उन्होंने डिक्लेयर किया। पर ये कोई ऑर्गेनाइज ढंग से नहीं था पूरा, मतलब ब्रिटिश के खिलाफ, तो मतलब जगह जगह हुई। तो और फिर वहाँ पे झांसी की रानी थी, उन्होंने झांसी में शुरू किया, फिर लखनऊ में अवध बगावत हुई, पर अंग्रेज़ों ने बड़ी बुरी तरह से उसको कुचल दिया वो। और फिर अपना वहाँ पर जो मतलब भारतीयों को निकाल दिया, अंग्रेज सिपाही लेकर के आए। तो कहते फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कोई ऑर्गेनाइज बैटल नहीं थी, पर कहा जाता है कि म्यूटिनी है, सिपाही म्यूटिनी कहते थे
1: 1857 की।
0: हाँ
1: जी,
0: तो उन्होंने बड़ी बुरी तरह का चल दिया। और वहाँ से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हुई और जो अंग्रेज सरकार थी, मतलब अंग्रेज हुकूमत, उनका राज हो गया। और 1871 में क्वीन विक्टोरिया को भारत की एम्प्रेस डिक्लेयर किया गया। तो भारत डायरेक्टली जो है ब्रिटिश रूल के अंदर में आ गया। अब फिर उसके बाद में जो है धीरे धीरे हुई कि भाई कहीं ना कहीं आज़ादी होनी चाहिए, तो पर

0: बहुत दबी दबी आवाज में होता था वो 1866 में इंडियन नेशनल कांग्रेस उसका गठन हुआ पर उसको बनाने वाले भी कोई एक ब्रिटिश थे वो एलन ऑक्टेविन ह्यूम तो वो जो है कोई ऐसा नेशनल मूवमेंट नहीं था तो उन्होंने कहा कुछ लोग थे जो पढ़े लिखे थे ब्रिटिश में पढ़े लिखे थे उनकी एक कमेटी बनाई और जाकर के पूछे कि लोगों से कि भाई हमारे जो इंडियन लोग हैं उनके थोड़ा राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए उनको जो अच्छे वेजेस मिले जाएँ और कोई आज़ादी वगैरह की बात थी नहीं वो तो गुप्ता जी मैंने बोल दिया थोड़ा सा एक गीत वगैरह सुना दें
1: ब्रेक हो जाए और उसमें जो हम वंदे मातरम वाला आजकल काफ़ी चल रहा है तो ये वंदे मातरम वाला भी जो गाना है शायद आपने शायद मेरा दावा हो सकता है मैं दावा कर सकता हूँ इस तरीके का आपने वंदे मातरम नहीं सुना होगा तो हम श्रोताओं को एक वो वंदे मातरम सुनवाते हैं नए उसमें और इसके बारे में भी अगर कोई हमें बताए कि इसमें क्या है ऐसा खास

0: भाई साहब ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है
1: बहन जी करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है इसमें आनियन गार्लिक जिंजर टमाटर नमक मिर्च हल्दी धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है इट्स सो इजी इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au
2: ये थी हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश सुताओ आज जैसे मैंने बोला ये भजन और ये वंदे मातरम गाना हम पहले यहीं से शुरू कर देते हैं डॉक्टर साहब अच्छा बताइए किसने गाया है ठीक है कौन इसका कंपोजर है आप थोड़ा बताइए इसके बारे में और तो ये गाया किसने मेरा प्रश्न ये था लिखा नहीं गाया किसने है और तो जो भी इसके बारे में बता और किसने इसको कंपोज करा है क्योंकि इसकी धुन अलग है तो पहला वाला जो हमने भजन गाया था वो बलोच अगर आप यूट्यूब पे इसको सर्च करेंगे तो बलोच लड़की ने समझो ऐसे गाया है लेकिन शायद ऐसा नहीं
3: इसकी आवाज में कितना कितना है ना
2: ये वंदे मातरम भी बिल्कुल
3: मुझे तो एक्चुअली वो एबोरिजिनल म्यूजिक का क्या वाला फ्यूजन लग रहा था
2: यही तो दर्पण रेडियो की खासियत है पूनम जी तो ये चैलेंज है आप जो भी करना है गूगल करना जो भी करना करिए बताइए कि ये इनमें से कोई भी गाना किसने गाया है और किसने इसको कंपोज करा है और यहाँ से शुरुआत करते हैं तो डॉक्टर साहब वो बताएंगे कि जो हमारी पहली है 5 टिकटों वाली
4: हाँ तो जो कार्यक्रम हो रहा है इसका नाम है सुहाना सफ़र सीरीज 2
2: अच्छा जी इसका मतलब पहले
4: इसका नाम है
2: जी
4: तो ये इसके पीछे जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो हमारे केदार जी हैं उससे हमें मतलब उनसे बातचीत कराने की कोशिश करेंगे आपकी तो वो आपको केदार जी
2: साढ़े 10 बजे उनसे हम बात पाएंगे
4: पर ये मैं संक्षिप्त में बता दूँ ये जो है कार्यक्रम ये हो रहा है 27 अगस्त को और नॉर्थ राइड स्कूल ऑफ आर्ट्स में जिसके आप जाके टिकट खरीद सकते हैं पर इसके टिकट हमारे पास हम लोग लोगों को देंगे
2: पहले 5 टिकट देने वाले हैं तो 5 विनर को हम ये मिलेंगे एक एक टिकट हर एक को ठीक है ना डॉक्टर साहब
4: जी हाँ
2: ठीक है तो एक तो ये बात होगी और जो बंटवारा फिल्म आई है जिसके बारे में आपने कहा है बंटवारा तो उसका भी एक हम ट्रेलर सुना देते हैं
4: जी
2: इस फिल्म ये फिल्म रिलीज हो चुकी है कहते हैं कि बहुत ही भावुक और बहुत ही मार्मिक इसका है तो इस फिल्म को देखने के लिए भी आप जा सकते हैं विनर को एक पास मिलेगा जिसमें 2 टिकट होंगे
5: देश की आज़ादी मुबारक हो
6: आपको भी बहुत मुबारक
7: कौन सी आज़ादी और किसका मुल्क ये हिंदुओं का मुल्क है हिंदुओं का

0: नया घर और नया सफर मुबारक।
1: अब ये घर हमारा है, यहाँ की हर चीज हमारी है।
2: अम्मा यहाँ कोई है?
3: कौन है आप?
2: तुम कहो जी, तुम कौन हो जो मेरे घर में घुस आए?
1: कस्टोडियन वालों ने ये मकान हमें अलॉट किया है, आप यहाँ नहीं रह सकती।
2: मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है।
4: लगता है कि तैनू मुसलमान से ज्यादा हिंदू की फिक्र है।
1: आप मुझे धमका रहे हैं?
4: पंगा लेना है?
1: इरादा तो नहीं है।
0: घर देखेंगे न सरहद, सीधा घुस के मारेंगे।

0: सो तो ये आपने टेलर सुना है, फिल्म है बंटवारा, नई फिल्म है, ये ऑलरेडी चल रही है, सिडनी में भी चल रही है, पूरे ऑस्ट्रेलिया में चल रही है, जरूर जाके देखिए और अपना अगर किसी ने देखी है हमारे साथ में वो शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस। हमारा नंबर है आज के लिए 04215907 या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप हमें लिख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे जो मेहमान हैं उनका परिचय हो जाए।
1: तो मैं जिस भारत का स्वतंत्रता संग्राम था उसका एक भूमिका दे रहा था, मैं इनका शुरू में भूमिका दे दूं फिर अपने मेहमानों से
0: जी जी बात करेंगे। हाँ, बहुत जरूरी बात है।
1: तो जो मतलब देश जो है अंग्रेजों के अधीन हो गया था पर एक ललक थी कि जो है स्वराज होना चाहिए, अपना राज होना चाहिए, हम स्वतंत्रता होना चाहिए, पर उसको हमें समय लगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कांग्रेस का गठन हुआ था शुरू में, पर शुरू में कांग्रेस बहुत ही जो मतलब एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन था और इसका कोई ये मंशा नहीं थी कि देश को आज़ाद करा जाए, उसके लिए बनी हुई कांग्रेस। तो ये सन 1900 तक आते आते एक कांग्रेस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एक उन्होंने फॉर्म होने लगी थी। तो उसमें भी दो खेमे थे कांग्रेस। एक खेमा था ऐसा जो जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, वो कहते थे कि स्वराज होना चाहिए, बाकी लोग कहते कि नहीं हम अंग्रेज़ों के अधीन रहेंगे पर अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ते रहेंगे कि भाई तो हमारे पास राइट्स ज़्यादा हों। कोई इंडिपेंडेंस की तरफ उनका झुकाव नहीं था। तो तीन लीडर कहे जाते थे, बाल पाल और लाल, जैसे इसमें बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए और बीसी पाल। इन्होंने थोड़ा सा मिलिटेंट किया, नॉन वायलेंट ही थे पर वो कहते थे कि एक इंडिपेंडेंस या स्वराज होना चाहिए। फिर आया 1905, तो उधर क्या हुआ कि जो मुसलमान थे उन्होंने कहा कि हमारे अलग हित होने चाहिए, उन्होंने अपने हितों की रक्षा करी। तो एक तरफ मुसलमानों का बाहुल्य था वहाँ पे ईस्ट वेस्ट में जो आज का पाकिस्तान है, और दूसरा था यहाँ पे बंगाल में जो बंगाल और आसाम में। तो अंग्रेज़ों ने चाल चली डिवाइड एंड रूल की, उन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। तो ईस्ट बंगाल जो है मतलब मुस्लिम बाहुल्य था, वेस्ट बंगाल में जो हिंदू थे तो वो लोगों को अच्छा नहीं लगा बंटवारा। तो वहाँ से जो है स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ, और जो जितने मतलब वहाँ पे ईस्ट बंगाल थे तो उन्होंने कहा कि भाई स्वदेशी होना चाहिए सब कुछ, और वहाँ से स्वतंत्रता की लड़ाई को थोड़ा सा ज़्यादा बल मिला। और फिर उसके बाद में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुई तो कई सारे भारतीयों ने सोचा कि हम अगर साथ देंगे अंग्रेज़ों का तो अंग्रेज शायद हमसे ज़्यादा लीनियंसी बरतेंगे और हमें ज़्यादा राइट्स देंगे। तो काफ़ी हद तक भारतीयों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया पहली वर्ल्ड वार में, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, अंग्रेज़ों ने कुछ मतलब बहुत ज़्यादा कंसेशन दिए नहीं इंडियंस को। फिर 1919 में एक एक्ट आया जिसका था नाम रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट में ऐसा था कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हों उनको आप पकड़ के बंद कर सकते हैं, कोई उन पर मतलब चार्ज प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, कोई कोर्ट में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे लोग बहुत भड़के, लोगों का ना बहुत मतलब जोश हुआ कि ये कैसा हमारे पर इम्पोज किया जा रहा है, और डेमोन्स्ट्रेशन हुए सब काफ़ी। तो उसी के चलते चलते जलियांवाला बाग हुआ जिसमें आप जानते हैं कि कितने नेते लोगों पर वार किया गया था। तो करीब 400 लोग का आंकड़ा कहा जाता है, पर कहते हैं कि कई असली फिगर कहीं ज़्यादा थी। तो उससे जो एक आग थी वो भड़की, स्वतंत्रता
2: चिंगारी
1: चिंगारी भड़की, हाँ आगे भड़की। तो फिर उसके बाद में उन्होंने गांधी जी आए, वापस आए 1915 में साउथ अफ्रीका से, तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया और कहा कि भाई ब्रिटिश गुड्स हैं इनको आप बाइकआउट कीजिए, ब्रिटिश एजुकेशन है उसको बाइकआउट कीजिए, हाँ उसको बाइकआउट करे जाए। और फिर 1929 आया तो वो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बदल गया। तो उनका कि भाई हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, और मेनली ये था कि जो नॉन वायलेंट रूप से किया जाए। और फिर 1942 में उन्होंने कहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट, तब उनकी ये मतलब आवाज़ बुलंद हुई कि जो ब्रिटिश लोग तुम लोग छोड़ करके जाओ भारत को,
2: भारत छोड़ो,
1: हाँ वो भारत छोड़ो, तो करो या मरो का उन्होंने जो वो दिया था भाषण, वो दिया नारा दिया था। तो फिर आई वर्ल्ड वार टू तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश जब लड़ रहे थे तब उनके आर्थिक हालत खराब हो चुकी थी, तो उनको लगा कि अब हम भारत में ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, तो भारत को आज़ादी देनी पड़ी थी। तो मतलब ये है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जो मतलब आज़ादी ऐसे ही आराम से नहीं मिली, तो शुरुआत होती रही, उसके बाद में धीरे धीरे बल पकड़ती रही। और 1945 में जब उन्होंने कहा कि जो है ब्रिटिश लोगों ने रियलाइज़ किया कि जो है अब देनी ही पड़ेगी भारत को आज़ादी, तो एक
2: तब तक अच्छे से उन्होंने भारत का काफ़ी कुछ जिसे कहते हैं ना सारी वेल्थ ऑलरेडी ले चुके थे।
1: तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक प्रस्ताव रखा कि भारत का पार्टीशन किया जाए और जो है भारत को आज़ादी दी जाए, और 4 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसके तहत भारत को आज़ादी दी गई। और 18 जुलाई को जो है उनको रॉयल एसेंट मिली कि भाई ठीक है ये पारित किया जाएगा, और फिर जाके अगस्त में 14 अगस्त को पाकिस्तान को दी उन्होंने आज़ादी, और 15 को जो है भारत को दी। और मज़े की बात यह है कि जब भारत का बंटवारा होना था पाकिस्तान और इंडिया में, उसको उन्होंने बुलाया था रेडक्लिफ को, रेडक्लिफ ने बनाया कि जे भाई यहाँ से जाएगी लाइन, वो आज़ादी के 2 दिन बाद रिलीज़ की गई। 2 देशों को आज़ादी दे दी उन्होंने, पर लाइन कहाँ से खींचेगी वो 2 दिन बाद जो है उन्होंने डिक्लेयर करी, ओपन करी। और उसके अवज में जो है फिर दंगे शुरू हुए, सब जानते ही हैं,
2: ये तो, उनका पर्पस था। जाते जाते वो एक
1: तो ऐसा जो दौर था, उस दौर को जो जिन्होंने अनुभव किया वो मतलब कितनी गहरी यादें थी, ऐसे लोग आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूँगा बजाज जी को। बजाज जी, आपकी याद क्या है उस समय की?
3: पहले तो नमस्कार सबको, आपके श्रोताओं को भी। वो याद जो है कुछ धुंधली हो गई हैं, वो 1947 की बात कर रहे हैं, उस वक्त मैं 11 साल का था। लेकिन हम एक छोटे से कस्बे में रहते थे जो लाहौर से 50 मील था करीब। और इंसिडेंटली उससे पहले मैं बता दूं कि इस वक्त जो बाकी के दो मेरे साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो भी लाहौर के ही हैं। तो अभी बात हो रही थी, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमया
2: नहीं,
3: तो आप हमें देख लीजिए। तो खैर वापस चलते हैं। तो जब मैं उस वक्त 11 साल का था और स्कूल में हम जाते थे, तो उसमें हमें उस वक्त आज़ादी के बारे में कुछ पता नहीं था कि भाई भारत में हम ग़ुलाम हैं। हम तो बल्कि वहाँ पर जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रही थी, वो सिपाहियों को देखते थे इधर उधर, स्कूल के रास्ते में मिलते थे हमें, कभी इधर से जा रहे हैं कभी उधर से जा रहे हैं। तो स्कूल में भी हमें वो एक नारा लगाते थे कि या इलाही कर तबाही, जर्मन और जापान की, बच्चा बच्चा मांगता है फतेह हो इंग्लिस्तान की। तो बड़े खुशी से हम लोग गाते थे। हमें क्या पता कि ये गांधी जी के बारे में भी बहुत कम, जैसे मैंने कहा हम तो गांव में रहते थे, ज़्यादा सुना भी नहीं था देखा भी नहीं था उनको
1: जी।
3: उनको बस ये उनके भी नारे लगते थे। एक और मैं बता दूं, एक चवानी चांदी की सारी दुनिया गांधी की, चवानी जो होती है वो
2: चांदी। सोशल मीडिया तो था नहीं,
3: ना कोई सोशल मीडिया नहीं था हमारे गाँव में, रेडियो तक नहीं था क्योंकि बिजली नहीं थी
2: जी।
3: बिजली नहीं थी तो रेडियो नहीं था, उस वक्त ट्रांजिस्टर तो होते ही नहीं थे। तो हमारी याद उसी वक्त ही आई जैसे जब पार्टीशन हुई और हम लोगों को वहाँ से भागना पड़ा। जब वहाँ पर दंगे भी जो थे वो कुछ देर पहले शुरू हो गए थे, लोग वहाँ से गुजरते थे छोटे छोटे।
1: मैं रुकना चाहूँगा वैसे, तो रेडियो नहीं था तो खबरें कहाँ से मिलती थी लोगों को?
3: हाँ जी, ये खबरें तो जैसे वो एक लोग तो चलते रहते थे
1: जी,
3: एक शहर से दुकानदार जाते थे सामान खरीदने
1: जी।
3: या जितने काम करने वाले हैं वो अपना कोई सामान लेने जाते थे, तो खबरें हमें वहाँ से मिलती थी और इसीलिए लेट मिलती थी क्योंकि
2: वर्ड ऑफ माउथ था।
3: हाँ जी, वर्ड ऑफ माउथ, इंस्टेंट तो कुछ था ही नहीं ना,
2: कुछ था ही नहीं।
3: तो खबरें, जैसे आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि खबरें कैसे मिलती थी, तो खबरें ये सब मुँह ज़बानी आती थी। तो उसमें लोग दुकानदार ख़ास तौर पे काम जाते थे, अपनी आड़ती, वो हमारे पास एक बड़ी मंडी थी पत्तों की मंडी, وہاں پر جا کے وہ اپنا گیہوں لے جاتے تھے, کپاس لے جاتے تھے جو زمینداروں سے خریدتے تھے, تو وہ ان سے خبریں ملتی تھیں. یا جو لوگ جا کے اپنی دکان کے لیے دوسرا سامان لائے, زمیندار تو بیچارے وہیں کام کرتے رہتے تھے, تو وہاں سے ہمیں یہ خبریں ملتی تھیں. اور کچھ دن پہلے شروع ہو گیا تھا کہ بھی دیکھو آزاد ہندوستان آزاد ہو رہا ہے, جیسے میں نے کہا نا کہ وہ ادھر ادھر جب شور شرابہ ہوا تو پھر پتہ لگنے لگا, لیکن یہ نہیں ہمیں پتہ تھا کہ ہم ہندوستان میں آئیں گے یا پاکستان میں. وہ کہتے تھے کہ ہم راوی کے اس سائڈ میں تھے تو کہنے لگے ہندوستان میں جائیں گے.
1: نہیں تو ایک منٹ, تو جب آپ کو آزادی کی خبر ملی تو یہ خبر کب ملی کہ بٹوارا بھی ہوگا دیش کا؟
3: یہی تو وہ بعد میں ہوا نا کہ اب جو ہے ہندوستان آزاد ہو رہا ہے, انگریز جا رہے ہیں
1: جی,
3: لیکن یہ اس کو بانٹ کر جا رہے ہیں, مسلمان الگ ہو جائیں گے
1: جی.
3: تو لوگوں کو اعتبار نہیں آ رہا تھا, یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم تو صدیوں سے یہاں اکٹھے رہ رہے ہیں, کیسے بانٹ دیں گے, کیسے جائیں گے. اور جو وہاں پر مسلمان تھے وہ بھی کہتے تھے کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے. یا ہندو جو تھے
2: جی,
3: وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ جی ہم کوئی ایسا ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ بھائی
2: نہیں. تو لاہور میں جہاں آپ نے بولا آپ کا قصبہ تھا
3: جی,
2: وہاں پر آس پاس مسلمان بھی ہوں گے
3: ہمارے گاؤں میں تھے
2: جی جی, تو ان کے ساتھ تو بھائی چارہ تھا کوئی ہے؟
3: بالکل پورا بھائی چارہ تھا جی, کبھی کبھی ایسی ہندو مسلم کا سوال ہی نہیں پیدا,
2: کوئی ایسی بات نہیں.
3: ہم تو اکٹھے اسکول میں پڑھنے جاتے تھے بچے, ہمارا اسکول ہمارے گاؤں میں اسکول بھی نہیں تھا, یہ اور بتاؤں آپ کو
2: جی.
3: ہم ہمارے اسکول جانے کے لیے ہمیں پیدل جانا پڑتا تھا, چھ میل تھا اپنے گاؤں سے, تو اس میں ہندو اور مسلمان اکٹھے جاتے تھے, اکٹھے اپنا کھیلتے تھے, شام کو واپس بھی اکٹھے آتے تھے. تو ہندو مسلم کا تو سوال کبھی ایسے ہوا ہی نہیں, ہمیں ہوگا بڑوں میں بھی نہیں تھا کبھی, کیونکہ نہیں تو ہمارے اوپر بھی وہ فلٹر ہو کے آتا نا
2: جی. تو جانے کی باری آئی کہ اب ہمیں نکلنا پڑے گا, تو اس کی کوئی تیاری ہوئی یا بس ایک دم ہی سب چھوڑ چھاڑ کے نکل؟
3: ایک دم
2: سب کچھ وہیں ویسے ہی.
3: تیاری کا تو کوئی مطلب ہی نہیں تھا جی, تیاری کیا ہوتی, بھائی ایک آدھا دن ملا
2: جی,
3: وہ بھی کہیں ملا کہیں نہیں بھی ملا. لکیلی ہمارے گاؤں میں کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا, گاؤں میں کوئی آگ نہیں لگی, کوئی مار پٹائی نہیں ہوئی, بلکہ انہوں نے ہمیں ہیلپ کی جب نکلنے لگے وہاں سے.
2: تو آپ کی عمر اس وقت کیا تھی جب؟
3: میں اس وقت 11 سال کا.
2: جب پارٹیشن ہوا
3: جی, پارٹیشن جی.
4: آپ کا انوبھو کیسا رہا؟
3: ہاں جی,
1: یہ شرما جی ہیں,
4: پرچے بھی ہو جائے.
1: شرما جی ہیں, شرما جی بھی اس ٹائم پہ لاہور میں ہی تھے. تو شرما جی آپ بتائیے, آپ کا کیا انوبھو تھا؟
5: آئی واز بورن ان لاہور, میں اس سمے 13 سال کا تھا, 8ویں کلاس پاس کی تھی میں نے, اور 9th میں ہوا تھا, اسکول بند ہو گئے تھے سارے. تو آئی ہیو ویری ویوڈ میموریز, جب ہمیں یاد ہے, جو مجھے یاد ہے, اتنی جون جولائی میں ہی اتنی آگے لگی ہوتی تھی فائرس لاہور شہر میں کہ وی یوز ٹو کاؤنٹ, وہ یہ یہاں آ گیا ہے, یہاں آ گیا ہے. تو ایٹموسفیئر واز ناٹ ایٹ آل گڈ. لیکن جب ہم پڑھتے تھے اسکول میں, جیسے انہوں نے بجاج صاحب نے کہا ہے, تو ہم بالکل ایک ہی تھے, یہ نہیں پتہ تھا یہ مسلم ہے یہ ہندو ہے, دونوں اکٹھے ہی پڑھتے تھے, کوئی فرسٹ آ رہا ہے کوئی سیکنڈ آ رہا ہے, تو اس سمے نہیں تھا. لیکن انگریزوں نے بڑے طریقے سے بیج بویا تھا
2: جی,
5: آف ڈفرینشیشن بٹوین ہندوز اینڈ مسلمس. وہ کیا تھا, دیکھیے ٹرین اسٹیشن پر پانی رکھا ہوتا ہے, تو دو مگ ہوتے تھے, ایک ہندو پانی ایک مسلم پانی.
2: بتائیے وہیں سے شروع ہو گیا ڈسکریمنیشن, پانی سے,
5: پانی اسٹیشن
2: دھیرے دھیرے.
5: ہم لوگ جو تھے اس سمے چھوٹے تھے, تو ہم پانی مسلم پانی نہیں پئیں گے اگر ہندو پانی خالی بھی ہو, پیاسے ڈالیں گے. تو ایسے ایسے اس سمے وچار بنے ہوئے تھے. لیکن میں آپ
2: تو یہ اسکولوں میں مطلب جیسے یہ ایک طرح سے پرچارت کیا جاتا تھا کہ بھائی ہندو الگ ہیں اور
5: نہیں, ہم تو میں آئی واز اسٹوڈنٹ آف ڈی وی اسکول, تو نو ڈیفرنس.
2: اچھا, وہاں تو زیادہ تر ہندو ہی ہوں گے پھر تو.
5: ہاں سارے ہندو ہی ہوتے تھے, لیکن پرائمری اسکول جب جو تھا ہمارے گھر کے پاس ہی تھا, وہ اس میں آدھے مسلم آدھے ہندو, ٹیچر ہیڈ ماسٹر باز ہندو,
2: اچھا
5: وائس ہیڈ ماسٹر باز مسلم, تو ایک سکھ بھی تھا اس میں, تو ایسے ٹیچر بٹے ہوئے تھے. تو ہم لوگوں کو جب اسکالرشپ کے لے کے گئے تھے, تو بانٹ کے لے کے جاتے تھے, دو ہندو دو مسلم, ایسے کرتے تھے.
1: اچھا,
5: تو اینی وے تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آئی واز بورن ان لاہور, اور آئی ہیو سین بہت ویویڈلی, آئی ریممبر. उस दिन का जो दिन है उसके बारे में मैं ज़्यादा बताऊँगा भाई फादर वाज इन रेलवे ही हैड कम वी हैड बीन आस्क्ड टू वेदर ही विल ऑप्ट फॉर इंडिया और पाकिस्तान ही हैड ऑप्टेड फॉर इंडिया तो हमारा सब सामान सारा पैक किया हुआ था
2: अच्छा।
5: और हमें वैगन मिलनी थी रेलवे की तरफ से तो जो वो डिले कर रहे जाने जाने में मुझे नहीं पता तो हम उस समय घर में थे माय फादर हैड कम फ्रॉम दिस ऑफिस तो वो ही वाज रिलैक्सिंग और हुक्का पी रहे थे तो नीचे उस दिन फ्राइडे का दिन था तो नीचे शोर मच गया ऑल ऑफ ए सडन मुस्लिम क्राउड इकट्ठा हो गया और वो सारे के सारे लाठिए और चाकू और नारे लगाने लगे और हम लोग हम जो थे फैमिली तीन फैमिली हिंदू थी तीन फैमिली हिंदू थी वो सारी की सारी इकट्ठी रहते थे
2: हो गए।
5: तो एट द टाइम एट दैट टाइम आल्सो वो सारे इकट्ठे हुए एकदम क्या ये क्या हो गया है तो बहुत हड़बड़ मच गई
2: हड़बड़ी मच गई
5: तो ऑल ऑफ ए सडन वी हैड टू लीव लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊँगा कि जो हमारा घर था वो मूरी गेट में था और कुचा नॉन निहाल सिंह वॉज द स्ट्रीट विच वॉज द ग्रैंड सन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हमारे घर के सामने जो कुछ नॉन निहाल सिंह था उसने वो हवेली बनाई थी ना वो इंडिया का नेशनल पाकिस्तान का नेशनल हेरिटेज है वो तो वो बिल्डिंग थी वो टू स्टोरी बिल्डिंग थी हमारे पाँच मंजिला मकान से ज़्यादा ऊँची थी तो हम लोगों ने तैयारी कर रखी थी कि अगर ऐसे मॉब आएगा तो हम उस पर पत्थर फेंकेंगे तेल के बम फेंकेंगे अब अंदर की दीवारें तोड़ ताड़ के रखी हुई थी बोरियाँ भरी हुई थी लेकिन जब छत पर गए और फेंकने की कोशिश की तो बिल्कुल नाकामयाब हुए क्योंकि जो सामने वाला स्कूल हवेली थी उसकी नौनिहाल सिंह की वो हमारे पाँच मंजिले मकान से ऊँची थी तो पुलिस स्टार्टेड फायरिंग ऑन अस इंस्टेड ऑफ फायरिंग ऑन द क्राउड दे फायरिंग दे वर फायरिंग ऑन अस
2: सिविलियंस
5: हमारे गोली भी लगी एक दो को तो सारे डर गए तो प्लान बाद मेड के क्या आप क्या किया जाए
2: जी
5: उससे पहले इनको पता नहीं कैसी खबर लगी है कि पाकिस्तान में लाहौर आ गया है हमारे जो दो किराएदार थे नीचे एक स्कूल था छोटा सा और एक मास्टर टेलर मास्टर था वो टेलर मास्टर अपनी मशीनें निकाल के ले जा रहा था तो मेरे पिता ने पूछा भाई अपनी ये क्यों ले जा रहे हो कहते शहर में सर गड़बड़ है तो मैंने सोचा घर में काम करेंगे हमें नहीं बताया कि
2: तभी नहीं बताया
5: मतलब दे वर ऑल प्लान्ड और वेल एग्जीक्यूटेड आल्सो तो हम लोग फिर इकट्ठे हुए सारे तो देर वॉज नो वे कि आप नीचे घरों से जाओ नीचे दरवाजे तोड़ रहे हैं हमारे हमने नीचे ना पंप रखे हुए थे पानी के बुझाने के लिए वो भी नाकामयाब हुआ सारा कुछ ट्राई किया थोड़ा सा पहले डर के मारे हम लोग सब भागे हम लोग तीन भाई थे जो हमारी सिस्टर्स थी वो पहले इंडिया में आ रखे थे इसमें सेफ्टी के लिए तो वो आग जो थी उन्होंने हमारे घरों में लगा दी हम हरेली ऊपर से गोलियाँ चल रही है तो छतें
2: टाप के हाँ।
5: जो लाहौर में जो मकान थे जुड़े हुए थे
1: और गर्मियों का मौसम रहा होगा अगस्त का
5: मूरी गेट में लाहौर में ना 12 गेट है ऐसे लाहौरी गेट मुची गेट ऐसे थे
2: तो वो दिल्ली में भी वैसा ही मूरी गेट है और
5: एक रोड के ऊपर ही थे सारे
2: हमारा
5: जो था मूरी गेट था लाहौरी गेट के साथ
2: अच्छा
5: तो नारकली भी नियर बाई था तो उस सामने से गोलियाँ चल रही हैं हम लोग डर के मारे भाग रहे हैं बूढ़े भी हैं बच्चे भी हैं मैं भी था छोटा तो वो क्रॉस करना शुरू कर दिया अल्टीमेटली वी हम एक जगह ऐसी जगह पहुँचे जहाँ के मुस्लिम का घर है वो सामने तो गली छोटी सी थी इतनी छोटी थी कि उससे सामने हमारे जो खड़ा था चाकू लेके लड़का खड़ा था मुस्लिम बॉय उसका घर था वो
2: जी
5: तो हम लोग डर गए सारे कि ये चाकू मारेगा तो हम तो देते हैं तो जब हमने कोशिश की उसको पूछने की तो उसने कहा सर आप डरो नहीं आप आ जाओ मैं आपकी हेल्प करूँगा उसने चारपाई लाई और हमें क्रॉस करवा के छोड़ दिया उसको क्रॉस करने के बाद हम जो पहुँचे हैं तो थोड़े से हिंदू मजहब में पहुँच गए
2: अपने अपने एरिया में आ गए
5: थोड़ा सा हम हिंदू एरिया में पहुँच गए तो वहाँ जाके हमने फिर जो मोरी गेट का बाज़ार था उसको क्रॉस करने के लिए لوج آرمی واز کنٹرولنگ وہ سب سے پیسے لے رہی تھی پیسے دو اتنے ہر ایک آدمی سے جائے گا تو ہمارے پاس تو پیسے تھے نہیں بالکل خالی تھے ہم تو ہماری باری لاسٹ میں آئی تو جب ہم محلے میں پہنچے تو پھر ہم کیمپ میں چلے گئے تو کیمپ میں ہمیں ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی جو میرا برادر تھا بڑا وہ آیا تھا میرے فادر نکر میں تھے وہ اسکاؤٹ کے بھی انچارج تھے سم تھنگ ان دی آفس مجھے نہیں یاد لیکن وہ بھی تھے ایسے ہم کراس کر رہے تھے تو ڈی اے وی کالج کیمپ میں ہمیں آ کے رکھا گیا تو کھانے کو فرسٹ ڈے کو کھچڑی ملی جو گرم تھی نہ کھائے بنتی ہے ہاتھ میں لو تو پھینک تو دیٹ واز دی کنڈیشن ہم اس سمے لیکن ہمیں اتنا محسوس نہیں ہوا کہ ہم اتنے خراب ٹائم سے نکل رہے وی تھاٹ دس از پروسیس آف ٹائم
1: ٹیمپرری ایک چیز
5: ہے ہمیں بالکل آزادی کا کچھ
2: پتہ کوئی آئیڈیا نہیں تھا
5: بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میرے سے زیادہ آزادی کا مزہ انہوں نے لیا ہے جو کہ دلی میں تھے شی واز لکی ٹو بی ایٹ دیٹ ٹائم ان دہلی تو میں تو بالکل ہم تو بالکل نیگیٹو وچار میں تھے اس سمے کہ یہ کیا ہو گیا لیکن
1: آپ لوگوں نے آگ پر سمجھا کہ یہ دنگے بھڑکے ہیں کچھ دنوں میں شانت ہو جائیں گے پھر ول بی بیک ٹو نارمل
5: واپس آئیں
2: گے اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں کہ یہ گوروں نے ہندوستان کو چھوڑ دیا اس چیز کا کچھ اندازہ نہیں
5: یہ اندازہ تھا کہ وہ چلے گئے ہیں
2: چلے گئے
5: لیکن یہ نہیں تھا کہ ہندو مسلم اکٹھے نہیں رہیں گے اس سمے تو یہ بچار تھا کہ ہم یہ
2: جی جی جی بہت ہی اموشنل ماحول ہو رہا ہے
6: مہمان کو ہم جو لیں گے اور اس کے بعد میں پھر ہم ریکھا جی سے بھی بات چیت کرتے ہیں تو ایک جو
2: چھوٹا سا بریک
6: ہے جو بٹوارا فلم کا ہی ہے اس کو سنتے ہیں

0: Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters, authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
1: Ete hamare sponsor Curry Master ka sandesh. To hamare jo teesre mehman hai unko bhi
2: doctor ji ek pehli jo hai वो हम रन कर रहे हैं इस प्रोग्राम में,
1: हाँ वो भी बता देते
2: तो
1: हैं।
2: लोग अगर मतलब पहले का उत्तर देना चाहें तब उसमें विनर चूज करेंगे।
1: तो इसमें एक और हम 16 किलो दे देते हैं, लगता किसी को नहीं लगता डिफिकल्ट हो गई है कि ये जो गाया है वो एआई ने गाया है और कंपोज भी एआई ने करा है।
3: क्या बात है।
1: मैं दोबारा से बोलता हूँ, ये गाया है एआई ने, कंपोज भी एआई ने करा है। कितना मुझे पूनम जी, चलो बात कर ही लेते हैं, कल जब मैंने इसका सिलेक्शन करा था, अगर यही एआई का हाल रहा तो क्या होगा। कितनी कर्कश आवाज़ थी, कितनी मधुर। मैं तो मतलब कई बार इसको सुन चुका हूँ, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रभाव है, अगर
3: तो आपने सर्च में क्या डाला?
1: नहीं, मैं काफ़ी इसको देखता रहा, मैं एक कोशिश करता हूँ कुछ नई चीज़ लेके आए। एआई के ऊपर बहुत कुछ हो रहा है। अभी मैंने थर्सडे को एक बहुत बड़ा इवेंट, वो मतलब एक पॉलिटिकल वो था कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, अपोजिशन की पॉलिसी क्या है एआई के ऊपर, वो क्या सोचते हैं, कैसे इसको मैनेज करा जाए, कैसे कुछ लोग कंट्रोल में जाते हैं, कुछ कहते हैं कि मैनेज करा जाए। और इसका जो जो जो प्रभाव है पूनम जी, वो हर चीज़ में है। आप चाहे डॉक्टर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप लॉयर हैं, आप गीतकार हैं, संगीतकार हैं, फिल्म बनाने वाले, डांस करने वाले, हर चीज़ में इसका प्रभाव आ चुका है। जो उसका हेल्थ में जो प्रभाव आने वाला है, डॉक्टर साहब शायद आप ज़्यादा समझ पाएंगे इस चीज़ को, वो बहुत बहुत बहुत दूर तक जाने वाला है। अब इससे हम डरा जाए या हमें इसको अंगीकार करा जाए, मैं समझता हूँ कि इसको अब रोका नहीं जा सकता है, इसको अंगीकार करना होगा। और आप ये मान के चलिए ना, किसी के जॉब कम होने वाले, कुछ नहीं होने, लेकिन हमारे जो सोच की व्यापकता है वो बहुत बढ़ने वाली है। आज आप जाएं कि किसी भी रीजनल टाउन में जाएंगे, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। जीपी से मिलने के लिए आपको एक महीने का वक्त चाहिए होता है, कैसे चलेगा? डेंटिस्ट का नहीं, ये नहीं, टेली मेडिसिन आज की डेट में अवेलेबल है, क्यों नहीं इस्तेमाल करते? प्राइवेसी, प्राइवेसी क्या है? प्राइवेसी, अब प्राइवेसी खत्म हो गई, सबके कंप्यूटर हैक हो चुके हैं, सबके फ़ोन हैक हो चुके हैं।
3: बिल्कुल सही,
1: आप उसमें जाओगे तो कुछ नहीं रखा है। लेकिन अब हमें अगर इस चीज़ को मैनेज नहीं करा, जिसको एआई बायस बोलते हैं कि कौन आदमी अपनी चीज़ थोप रहा है, जैसे आपने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन करो तो आप चाइना में होंगे तो उसकी कोई डेफिनेशन नहीं आएगी, उस तरीके का चल रहा है, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया की वैल्यूज़ हमारे एआई में आ रहे कि नहीं आ रहे। अब इसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारे जो डाटा सेंटर हों वो ऑस्ट्रेलिया में हों। अब उसकी बिजली कहाँ से आएगी?
2: तो गुप्ता जी एक पहली बता दें लोगों को, जिससे कि लोग उसका उत्तर देते रहें।
1: हाँ,
2: तो पहली ये है कि एक लता मंगेशकर का एक गीत है
1: जी, चलिए आप,
2: जो कि बहुत ही मतलब आज़ादी से जुड़ा हुआ गीत है।
1: हाँ,
2: जो कहते हैं कि मतलब लोगों में जज्बा बढ़ाता है आज़ादी का, तो वो लोग हमें बताएं कि लता मंगेशकर जी का कौन सा वो बहुत मशहूर गीत है जिसे कहते हैं कि नेहरू जी ने भी सुना था, उनके आँख में आंसू आए थे।
1: ये बहुत सा आसान वाला है।
3: हाँ,
1: पहले डिफिकल्ट वाला गड़बड़ हो गया।
2: हाँ,
1: मैं सोच रहा था कि हमारे दर्पण के श्रोता थोड़े जो है ना वो है, लेकिन
2: तो पहले तो दो है ना।
1: अब पहली मतलब आप अभी तो ये हो गया कि कोई चीज में आप आंसर करो।
2: नहीं, हमारे पास दो टिकट है, एक तो सुहाना सफर प्रोग्राम है, उसके उसके उसके पांच पांच
1: छह लोग विनर होंगे।
2: हाँ, और बंटवारा फिल्म है उसके। हाँ, तो छह विनर होंगे।
3: चलिए, आज तो बहुत वैरायटी है हमारे पास।
1: हाँ,
3: और अभी तो आसान पहेली का
2: बताएं कि वो गाना कौन सा था जो लता मंगेशकर का एक आइकॉनिक गाना है।
1: तो एक
2: पहेली लोग आंसर करेंगे।
1: तो एक हाँ, एक रेखा जी का हम कर ले, हमने उनको बोला था 10 बजे करने का, उनको ले लें रेखा जी को।
2: हाँ जी, मैं
1: आप लगाऊं? मैं लगा लेता हूँ। चलिए,
4: हेलो यतीन जी।
1: रेखा जी कैसी हैं?
4: बस बस, मैंने कहा
1: दर्पण रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: ओ, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप रेडियो पे हैं, लाइव हैं।
4: अच्छा।
1: मैंने कहा मैं बता दूं आपको।
4: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: तो रेखा जी बताइए, आप 15 अगस्त में हमारे श्रोताओं को क्या सुनाना चाहती हैं?
4: मैं एक नई कविता लेके आई हूँ यतीन जी, और एक चार पंक्तियां मुक्तक है, तो आशा है उनको पसंद आएगा। और एक माहौल आपने बना ही रखा है, तो वो आगे बढ़ाते हुए मैं ये पढ़ना चाहूंगी। करते शत शत नमन आज आजादी के दीवानों को, देश की खातिर कर डाला न्योछावर अपने प्राणों को। फांसी हुई या जेल गए या चले गए काले पानी, कैसे भला भुला पाए उन वीरों के बलिदानों को, कैसे भला भुला पाए उन वीरों के बलिदानों को। और अब मैं कविता पे अपनी, मैंने जो कहा था नई कविता है। रोली अक्षत चंदन लेकर भारत माँ को नमन करूं, गगन धरा को और प्रकृति पावन माटी को नमन करूं। दुनिया भर को योग दिया और वेदों का भी ज्ञान दिया, संस्कृति और सभ्यता दी व अतिथियों को मान दिया। ज्ञान शून्य का देकर अंकों को सार्थकता दी जिसने, प्रेम और विश्वास सिखाया विश्व गुरु को नमन करूं। बीज गणित और शल्य चिकित्सा सारे जग को सिखलाई, आईटी और संचार माध्यमों में भी अग्रणी कहलाई। वेद पुराण और गीता ने जीवन जीना सिखलाया, शस्य श्यामला रामकृष्ण की दिव्य भूमि को नमन करूं। जिसकी आजादी की खातिर वीरों ने बलिदान दिया, काट गुलामी की बेड़ी फिर से माता को मान दिया। लहर लहर लहराए तिरंगा देश प्रगति करता जाए, लहर लहर लहराए तिरंगा देश प्रगति करता जाए। अपनी पुण्य पवित्र धरा को जन्म भूमि को नमन करूं। और इसका आखिरी स्टैंजा है
1: जी।
4: देश छोड़कर हुए प्रवासी नए देश बसने आए, देश छोड़कर हुए प्रवासी नए देश बसने आए। जाने कितनी बातें कितनी यादें अपने संग लाए, सदा ध्यान रखा विदेश में देश का ऊंचा नाम करें। देश पे कोई कष्ट ना आए यही प्रार्थना नमन करूं, यही प्रार्थना नमन करूं। और रोली अक्षत चंदन लेकर भारत माँ को नमन करूं।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत
4: जी। अजय जी भी बैठे, उनको भी नमस्कार।
1: नमस्कार, सब लोग आप, सब लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं, सब लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं
4: जी जी जी। और एआई की बात हो रही थी, तो अब तो गजलें भी प्रोड्यूस कर रहा है एआई अपनी आवाज में।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
4: बहुत कुछ हो रहा है। और आईडी भी आपकी पूरी चोरी हो रही है। उस दिन मैंने अपना नाम डाला, मेरी पूरी फैमिली के डिटेल्स बता दिए
1: जी जी,
4: जबकि मेरे हस्बैंड और बेटा तो है ही नहीं सोशल मीडिया पर एक्टिव। लेकिन ये एक रिस्क है बहुत बड़ा, मुझे ऐसा
1: वो अभी रिस्क को आप अंगीकार करिए, बस ऐसे मान के चलिए। जैसे कि शादी करना रिस्क है, लेकिन शादी तो करनी पड़ती है, ऐसे मान के चलिए। और उसको खूबसूरत बनाइए। थैंक यू रेखा जी, आज आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: आपने जोड़ा, अच्छा लगा।
1: तो ये हमारी हमारी रेखा जी, तो हमारी मैं तो उनको हिंदी की भाषा के लिए उनको मानता हूँ कि हमारे ऑस्ट्रेलिया में सी इज़ द लाइव एग्जांपल, वो कहते हैं कि वो हमेशा याद रहे,
2: हिंदी का झंडा आगे लेके चले।
1: हाँ, कितना उनका प्रयास, उनकी जो सतत प्रयास उनका हमेशा रहता है हिंदी के लिए। तो रेखा जी, आप जैसे लोगों की वजह से ही और दर्पण से आप जुड़ती हैं, तो हम दर्पण से भी हम हिंदी भाषा की जो सेवा कर सकते हैं वो हमेशा करते रहेंगे। तो क्यों ना हम अपने तीसरे मेहमान से जुड़ें।
2: हाँ, हम जो आगे बढ़ रहे हैं कि जो हमने 15 अगस्त 1947 को
1: जी,
2: कुछ हमारा सौभाग्य कि हमारे चूड़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो उस समय उस माहौल को उन्होंने जिया, उन लम्हों को एक्सपीरियंस किया। तो हमारे मेहमान हैं श्री तिलक कालरा जी। कालरा जी, आप बताइए कि जो आपका क्या अनुभव रहा, आपने क्या देखा क्या सुना?
5: मैं छोटी जगह है चुनिया, वहाँ पैदा हुआ था। और वो पत्तोकी से 8 मील थे जहां से संतराम जी रहे
1: अच्छा अच्छा
5: ये गांव से थे मैं तहसील से था
1: अच्छा अच्छा
5: मेरा ग्रैंडफादर वाज अ डॉक्टर
1: ओके
5: और माय फादर वाज वर्किंग विद एज अ फार्मासिस्ट और जो मुझे अभी भी याद है जो दुकान थी जहां पे मेरे ग्रैंडफादर काम करते थे बहुत बड़ा मैदान था जहां हम लोग खेलते वलते थे और सामने मस्जिद भी थी उसके थोड़े देर पहले हम लोग किराए के मकान में रहते तो फिर 6 महीने पहले माय ग्रैंडफादर बिल्ड अ न्यू हाउस तो बीच में ये मैं देख रहा था पुलिस आती थी किसी घर की तलाशी लेते थे कि कोई हथियार वगैरह तो नहीं तर कर पान हुई उस टाइम पे वही होता था मोस्टली तो वो ले जाते थे किसके पास लेकिन जब डिसाइड हुआ कि हमें चलना है तो पिताजी ने और मेरे ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि जो हमारे पास पैसे यहीं छोड़ जाएं या साथ में लेके जाएं फाइनली डिसाइडेड वी टेक विद अस उस जमाने में उस टाइम पे 8 मील के लिए बैलगाड़ियों में आधे लोग इस तरफ आए थे हम लोग पत्तों की क्योंकि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वाज अ पत्तों की और बुबला कार्ड में उस जमाने में पिताजी ने बताया था कि 250 रुपए पर फैमिली ने दिए थे उस टाइम पे
1: बताइए 250 रुपए तो बहुत थे
5: और उसके बाद हम लोग प्लेटफार्म पे 2 हफ्ते रहे इंतजारी के लिए कि कौन सी ट्रेन ठीक होगी तो हम लोग अमृतसर जाएं
2: तो मतलब ट्रेनें रोज नहीं चल रही थी
5: ट्रेनें चल रही थी
2: जी
5: लेकिन कौन सी ट्रेन ठीक है नहीं है
3: इस चीज का अंदाजा लगाना मुश्किल था
5: और हम लोग स्टेशन इस तरफ था हम लोग को बीच का जो प्लेटफार्म है वहां पे 2 हफ्ते वहां रुके और जब भी दोनों तरफ से गाड़ियां आ जाती थी तो हमारे पेरेंट्स बोलते मेन रोड पे चले जाओ मेन स्टेशन की तरफ चले जाओ क्योंकि डर था और उसके बाद जब हम लोग चुनिया से पत्तों की आए तो 4 गोरखे थे एक आगे एक पीछे और एक साइड साइड में हम लोगों को बचाने के लिए
1: मतलब
2: तो ये किसने अरेंज करे होंगे
5: मैं ये नहीं बता सकता मैं यही बता सकता हूं
2: जी
5: कि ये थे उन्होंने हमें
2: अच्छा
5: वहां पे पत्तों
3: की तो आप देखिए कि ये प्रिविलेज्ड फैमिलीज थी जिनके साथ है एक आम आदमी के लिए तो ये सब कुछ नहीं
5: मौजूद हम अकेले नहीं थे
3: जी जी
5: बहुत सी बैलगाड़ियां थी
3: जी
5: और हर फैमिली ने 250 रुपए दिए
2: थे तो आपने प्लेटफार्म पे 2 हफ्ते बिताए
5: हां जी 2 हफ्ते बिताए उसके बाद क्या हुआ कि एक ट्रेन में बैठे हम लोग
3: और वहां खाने पीने का इंतजाम
5: खाने पीने का ऐसा ही था कुछ लोग आते थे दे जाते थे कुछ वहीं पे ही बनाया जाता था
3: ओके
5: और इमेजिन करिए बारिश भी होती थी अगस्त के महीने
3: और ये तो मतलब बहुत सारे लोग होंगे प्लेटफार्म तो बड़ा लिमिटेड
5: अब मैं ये नहीं बता सकता कितने लाख है इतना याद तो नहीं है लेकिन जब ट्रेन में बैठे तो रायविंड लाहौर से थोड़ा पहले है एक जगह
3: जी जी
5: तो वहां पे ट्रेन रुकी और अब पिताजी ने बोला कि भाई आप नीचे घुस जाओ
3: सीटों के नीचे हां
5: सीटों के नीचे डर था लेकिन वहां पे भी गोरखे थे उन्होंने कुछ गड़बड़ होने नहीं
3: दी अच्छा
5: लाहौर जाने लाहौर से करीब मेरा जहां तक ध्यान है कि 25 30 मील 50 मील के करीब
2: तो फिर वो जो ट्रेन थी वो भी खचाखच भरी होगी बिल्कुल हर कोई जाना चाहता था
5: ये अब ये मैं नहीं बता सकता इतनी देर तक नहीं पर काफी लोग थे
3: काफी लोग थे
5: तो फिर अमृतसर जब पहुंचे तो हम लोग वो आई थिंक किसी कॉलेज में हमें रखा गया था 2 हफ्ते के लिए खालसा कॉलेज यही तो वहां पे खाना वाना मिलता था और उसके बाद हमारी एक मौसी थी वो डेहराडून में थी
3: जी
5: तो डिसाइड किया गया भी चलो वहां चलते
3: वही सबसे नजदीक है वहीं चला
5: गए तो वहां से डेहराडून गए तो रास्ते में हमें खाने के लिए सामान दिया जाता ट्रेन पे प्लेटफार्म पे लोग के आके सामान देते थे और दुर्भाग्य की ये बात है कि वहां पे भी दंगे हो रहे थे उस टाइम पे और रात को हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे और सीढ़ियों के पे लाइव वायर रखी जाती थी
2: ये देहरादून की बात कर रहे हैं
5: हां जी
2: अच्छा
5: देहरादून की बात कर रहा
2: हूं अच्छा
3: मतलब जिंदगी का जैसे कोई आप रात सोए हैं सुबह उठेंगे किसी को नहीं पता
5: किसी
3: था
5: किसी को नहीं पता
3: ऐसी अनसर्टेनिटी थी
5: और उसके बाद फिर डिसाइड किया गया कि भाई हम लोग जालंधर वहां मेरे ख्याल में 2-3 महीने रहे हम लोग और जालंधर चले गए तो माय फादर वाज माय ग्रैंडफादर वाज क्वाइट ओल्ड एट दैट टाइम तो ही कुड नॉट प्रैक्टिस मच तो माय फादर स्टार्टेड वर्किंग विद अनदर डॉक्टर as a pharmacist. तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम तो थी थी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी कि जहाँ जहाँ से निकले थे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी
2: तो सोचता हूँ ये सब हमने जो अनुभव सुने थे वो बॉर्डर के एरियाज के थे लाहौर के थे पर हमारे साथ मिस्टर शर्मा भी हैं जो उस समय दिल्ली में थी
3: हाँ।
2: तो आप अब बताइए मिस्टर शर्मा कि आपका कैसा रहा अनुभव उस टाइम पे आपने क्या सुना क्या देखा
6: हाँ वैसे तो मैं भी लाहौर की ही हूँ
2: जी
6: मेरे पिताजी भी डीएवी कॉलेज के प्रोफेसर थे मेरे दादाजी भी डीएवी कॉलेज में प्रोफेसर थे और डीएवी कॉलेज में हमने बचपन में एक दो लाइनें अगर गा के सुनाऊं तो एज ए हमने प्रेजेंट भी किया हुआ है
3: श्रोताओं मैं बताना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छा गाती हैं जब हम भजन की बात कर रहे थे तो इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है तो जुराए ज़रूर सुनाएं प्लीज़
6: तो वो था बुझा दूं हंस कर जीवन दीप देश

0: डीएवी कॉलेज का एनुअल फंक्शन था, मैं और मेरे से छोटी एक सिस्टर, हम लोगों ने ये वाला बोला था। तो माहौल जो था इतना ज़्यादा जोशीला था उस समय, लोगों के अंदर जोश था, और हमारे परिवार में सब पढ़े लिखे थे लोग, तो इसलिए वो कहते थे कि राज बदल जाते हैं, पब्लिक इधर से उधर लोग नहीं जाते, वो वहीं रहते हैं। तो उनको ये विश्वास था कि हम यहीं रहेंगे, अगर ब्रिटिश रूल चला भी जाएगा।
1: ये कौन से सन की बात थी?
0: 47 की बात
1: है। अच्छा, वो जो आप बता रहे हैं जो, हाँ।
0: तो उस समय, लेकिन फिर भी जो डर था, फैलाव था उस समय, जैसे इन्होंने सबने बताया भी, आग नीचे से घरों के अंदर लगा देते थे, और हम स्कूल में जब मैं 8-9 साल की होंगी तब, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद बच्चों को जाके ऊपर छत के देख के आओ कितनी जगह आग लगी हुई है।
2: अच्छा,
0: घरों के नीचे से आग लगा देते थे।
2: ये दिल्ली का माहौल था,
0: लाहौर की बात।
2: अच्छा, लाहौर की बात।
0: तो वो छतों पर से जाके हम गिन के आके बताते थे कि इतनी आग, धुएं से धुआं जो दिखते थे भी, इतनी जगह, 5-10 जगह, 15 जगह। तो ये डर का माहौल तो था ही, सब घर में ही रहते थे। और उसके बाद लेडीज़ को, औरतों को निकालने की कोशिश की सबसे पहले, कि बच्चों को और लेडीज़ को निकालें। तो मेरे ताई जी कांग्रेस में एक्टिव मेंबर थे, और उनको इनविटेशन था लाल किले का, 15 अगस्त का।
2: अच्छा,
0: उनको इनविटेशन था। वो हम तीन बहनों को लेके, क्योंकि जॉइंट फैमिली में हम लोग रहते, तो उन्होंने अपनी लड़कियों को तो पहले ही बॉम्बे भेज दिया हुआ था। एक की शादी हो गई थी तो दो को, अपनी लड़कियों को भेज दिया था। फिर हम तीन बहनों को लेके, एक मेरे से बड़ी, एक मेरे से छोटी, वो दिल्ली आई। उन्होंने अटेंड करना था 15 अगस्त का जो
2: फंक्शन
0: प्रोग्राम था।
1: वो भी ट्रेन से ही आए होंगे?
0: ट्रेन से ही आए हम लोग। लेकिन दरियागंज में मेरे बुआ जी ऑलरेडी यहीं थी, वो पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर थे हमारे अंकल, तो उनके घर में भी बच्चे औरतें ऑलरेडी थे, रिलेटिव्स आके रुके हुए थे, हम भी उन्हीं के घर में रुके लेकिन जो 15 अगस्त का सीन है वो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, इतना जोश, इतना
2: वो पहली जो
0: थी जन 15 अगस्त की आज़ादी का। दरियागंज आपको गोलचे वाला जो मेन रोड है
2: जी,
0: उसके ऊपर पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने लोग, सब भरा हुआ बाजार, और लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, उस पर राष्ट्रीय गान चल रहे हैं, झंडे पूरी दोनों तरफ से झंडे सजाए हुए सड़क को, और पानी के लिए मीठे पानी की छबीले, और मिठाई तो ऐसे बट रही है जैसे कि शादी में भी नहीं बटी होगी। वाला जो मेन रोड है
2: जी,
0: उसके ऊपर पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने लोग, सब भरा हुआ बाजार, और लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, उस पर राष्ट्रीय गान चल रहे हैं, झंडे पूरी दोनों तरफ से झंडे सजाए हुए सड़क को।

0: था कि आजादी 15 अगस्त को मिल रही है तो उसकी तैयारियां होने लगी थी
1: बहुत तैयारी 15 अगस्त को तो वो पहला 15 अगस्त मैंने वहां देखा
2: लाल किला तक पहुंचने के लिए इधर जामा मस्जिद भी आता है सारा मुसलमानों का एरिया तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि कोई उधर से भी भड़के के भाई
1: बिल्कुल शांति खुशी का माहौल कुछ कहीं किसी को कोई
2: मुसलमान भी होंगे फिर तो जो दिल्ली रह गए पाकिस्तान नहीं गए
1: वो तो मुझे नहीं पता कि वो हिंदू मुसलमानों का क्या
2: ऐसी कोई
1: कोई उस समय ऐसी हलचल नहीं थी उस समय वो जो माहौल था मैं
2: तो आपने वो अच्छा माहौल
1: बहुत बहुत और ऐसा मैंने कभी आज तक उसके बाद नहीं देखा वो जो याद है या बचपन की कहिए मेमोरीज हैं लेकिन वो जो खुशी का माहौल था आज़ादी का जो जोश था लोगों में
2: तो आप कह रहे हैं आप भी लाहौर के ही थे तो आप कितने समय पहले निकले वहाँ से
1: हम 9 अगस्त को निकले
2: एक साल पहले
1: ना ना
2: अच्छा 9 अगस्त को नहीं
1: 947 के
0: अच्छा
1: 9 अगस्त को
0: आपको जब वहां से निकले तो आपका क्या अनुभव रहा मतलब आपको भी दंगों का कुछ सामना
1: करना पड़ा जो हम निकले मैं बता रही मैं ताई जी थे और हम तीन बहनें थे तो मेरे एक ब्रदर वहां इंटर में जो पढ़ रहे थे एक इंटर में थे एक बीए में थे जो डीएवी कॉलेज में ही पढ़ते थे तो जो इंटर में पढ़ रहे थे वो आए थे हमें छोड़ने के लिए और वो जब वापस गए हैं तो वो कहते हैं कि जो टांगा किया उन्होंने घर वापस जाने के लिए तो उन्होंने बताया कि इस मोहल्ले में हमने जाना है तो वो टांगे वाला उनको मुसलमान मोहल्ले की तरफ ले गया उस तरफ जाना शुरू हो गया तो वो डर गए कि ये गलत रास्ते पर ले जा रहा है तो वो टांगे से कूद के भाग के फिर अपने मोहल्ले में घर तक पहुँचे
2: अच्छा अच्छा
1: उनके साथ ये हुआ लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ हम बड़े आराम से दिल्ली पहुँचे और उसकी वजह से हमने यहाँ का पहला अगस्त और 80 साल हो गए देखते हुए 15 अगस्त
2: क्या बात
1: है हम मैं लक्की अपने आप को समझती हूँ कि मैं
2: आपने
1: इस माहौल
2: समय भी देखा
1: वो भी देखा और
2: बहुत बढ़िया
3: ये जो याददाश्तें हैं वो आज ऐसे आज ऐसे स्वतः हो रहा है कि वो समय वापस आ गया
0: है प्रसंग है ये
3: जी
0: और हम बहुत ही मार्मिक है ऐसे प्रसंग और हमारे पास ऐसा सौभाग्य कि हम हमारे साथ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसको जिया
2: मतलब एक बात सुनना कुछ और होता है कहानियां सुनना कुछ और होता है बट आपके मुंह से जब हम सुन रहे हैं क्योंकि आपने तो खुद उसे अनुभव किया
3: तो एक छोटा सा ब्रेक हो जाए और एक ऐसा सुनवाते हैं शायद इन सबके साथ में जुड़ा होगा।

0: curries but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters. Authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
1: Shotao, kaisa lag raha hai program aapko?
2: हमारे लिए एक बार मैं बोल दूं फिर से हां लोगों ने जो सुना नहीं हुआ पहले लिखो कि एक लता मंगेशकर जी का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध गीत है जो उस गीत के बारे में बताइए जो देशभक्ति का गीत है जो सब जानते हैं तो वो गीत क्या है
1: जो अगले ब्रेक में है वही गाना सुनाने
2: वाला गीत का अगर उत्तर दिया तो आपको जो पहली आपको मिल सकती है
1: जी जी
2: के पहले जीत सकते हैं आप
1: तो सादा जी के आवाज में एक उन्हीं की हम कविता सुनते हैं गाना सुनते हैं
3: अभी जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं वही गाना मैं एक प्यारे में आपको सुनाती हूँ ये कवि प्रदीप कुमार जी का लिखा हुआ है और संगीतकार थे रामचंद्र और गायिका थी लता मंगेशकर समय था 1962 चीन के युद्ध के बाद और 26 जनवरी 1963 को गाया गया था और प्रधानमंत्री उस समय थे जवाहरलाल नेहरू जो रो पड़े थे इस गाने को सुनकर उसका मैं थोड़ा सा हिस्सा आपको सुनाती हूँ

0: बहुत बढ़िया
1: क्या बात है सर बहुत अच्छा आपने तो ना केवल अपनी बातें बताई लेकिन आपने मधुर आवाज से लाइव म्यूजिक हो गया है ना
2: आज देशभक्ति का पूरा माहौल
1: पूरा माहौल हो गया है तो डॉक्टर साहब ऐसा है कि समय जैसे कि होता हमेशा हमें धोखा देता है हम बताता है जैसे कि दो घंटे
2: लगता है कि जो सीमा नहीं होनी चाहिए समय की
1: जी
2: पर क्या करें कि सीमा है
1: जी तो क्यों ना हम अपने चारों मेहमानों से उनके द्वारा सुने जैसे वो जो भी कहना चाहते हैं और फिर हम समापन की तरफ जाते हैं तो पहले हम शुरू करते हैं बजाज जी से
3: जी उस वक्त की जो हैवानियत फैली थी उससे कितनी लाखों करोड़ों लोगों को एक्चुअली फ़र्क पड़ा है कुछ ऐसी हैवानियत वर्ड भी शायद गलत ही होगा क्योंकि हैवान भी या जो जानवर भी हैं वो भी ऐसा काम नहीं करते, बिना मतलब के इनडिस्क्रिमिनेटली लोगों को मारा गया।
2: आंकड़े बताते हैं कि करीब 10 लाख लोगों की जे
3: दस लोग तो हाँ बिल्कुल दस लोग तो मिनिमम है ही
2: हाँ।
3: और जो जितने वहाँ से एक दूसरे मुल्क से छोड़कर घर गए जिनका जिनको कोई पता ही नहीं था हम जब आए हमें पता ही नहीं था करना क्या है हमारे पास कुछ नहीं था कहाँ जाना है क्या करना है कैंप में रहे हम लोग वहाँ से जब हम आए तो हम पानीपत में आके कैंप में रहे हैं कई सारे गवर्नमेंट को लिए भी एक यहाँ पर इतनी समस्या पैदा हो गई थी नई गवर्नमेंट उनको पता भी नहीं है कि
0: तो क्या करना है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के जवानों को?
3: आज के जवानों को यही मैसेज दूंगा कि भाई प्रेम से रहें। अभी भी हमारे दिल में एक्चुअली बताएं तो हमारे दिल में वो ऐसी कोई बात नहीं है कि बदले की भावना नहीं है। हम फिर भी अपने आप को लकी समझते हैं कि हम लोग यहाँ बैठे हुए आपसे बात कर रहे हैं।
1: जी हमने अगर इतिहास से सबक नहीं सिखाना तो कोई माफ़ नहीं करेगा। सच्चाई ये है कि आप यहाँ हैं या कहीं और हैं हमारे ऊपर ही होगा क्योंकि हमने गलतियों से सबक हम प्यार की भाषा को समझ ही नहीं पाए। प्यार और बंदूक साथ साथ चलती है। अगर आपके अंदर वो ताकत नहीं है तो हर आदमी आपका फ़ायदा उठाएगा। हम यहाँ पर भी उस तरफ जा रहे हैं, हमें एक दूसरे के लिए खड़ा होना ही होगा। हम दर्पण रेडियो की तरफ से हम ये प्रयास करते हैं कि अगर किसी के ऊपर कोई चीज़ बात आती है हम ना किसी को सताते हैं ना हम अपने को सताने देंगे, दोनों में आएगा। हम जब किसी को ऐसा मौका देते हैं इसका मतलब है कि हमने उनके लिए सब कुछ खोल दिया है।
3: ठीक बात है, इस वक्त बिल्कुल पूरा अहिंसा भी काम नहीं कर रहा।
1: हाँ, अहिंसा का क्या मतलब होता है? हम भारतीय सबसे पहली बात है कि हम पैसे वाले होते हैं, हम सौम्य होते हैं, हम लॉ अबाइडिंग होते हैं, सब कुछ वो काम करते हैं जैसे हमें बोला जाता है हम लो हैंगिंग फ्रूट हैं। सबसे पहले इनके ऊपर अटैक करो। हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता और हमारे जो मेहमान हैं सब लोग इस चीज़ को एहसास करें कि अगर हमारे किसी के ऊपर भी कुछ बात होती है तो हम वहाँ पर उनके साथ में खड़े हों। अब जैसे कि एक टेम्पल में हुआ, अरे साहब वो टेम्पल में हम तो जाते नहीं, हमारे क्या लेना देना, अरे कल को तुम्हारे घर में होने वाला काहे के लिए वो करते हो।
0: सही बात।
1: तो सबक हमारा ये है कि नहीं, हम एक साथ में खड़े हैं और हम मानवतावादी हैं, हम किसी का नुकसान नहीं करते हैं लेकिन एट द सेम टाइम हम भी तो मानव हैं। हमारे हम कैसे उस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे, ये मेरा रूप है।
0: चलिए शारदा जी, आप बताएं आप क्या कहना चाहेंगे। ब्रह्म शर्मा जी बोलना चाहेंगे या आप? जी
4: मैंने लुक बैक उस समय को देखता हूँ, याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत भारी इंसानियत से गलती हुई है। इतने लोग बेगुनाह मारे गए, मैंने अपनी आँख से भी देखा है एक आदमी को मरते हुए, क्योंकि ही वॉज नॉट ऑफ दैट रिलीजन जहाँ उसने दूसरे
0: मुझे होना चाहिए।
4: तो ये इतना मुझे इस समय भी दुख होता है। तो मैंने लुक बैक आई फील इट वॉज ऑल ए फॉली, बिल्कुल बेवकूफ वाला काम था जो हमारे जिससे भी किया है, लेकिन अल्टीमेटली इट वाज नॉट ए गुड थिंग। मेरा एक्सपीरियंस ये है दैट पार्टीशन वाज नॉट ए गुड थिंग एट ऑल।
0: उसकी याद ही इतनी दर्द
1: आज उसका। आज मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि परिणाम, कर्मों का परिणाम जिसको कहते हैं, कभी कभी पूरे समाज को कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। आपने सुना होगा कि नेतन्याहू ने या कई नेताओं ने इसके ऊपर बात करी है कि जो ब्रिटेन है ना उनकी जो बच्चियों के साथ में हुआ ग्रूमिंग गेम जिसको आपने सुना होगा, वो 2.5 लाख तो वो बोलते हैं लड़कियां, यंग लड़कियां, उनके साथ में जो हुआ है बीभत्स हुआ है। ریڈیو پہ بات کرنا بھی بڑا مشکل ہوگا آج ان کیا ہو رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جس میٹر آف ٹائم جو انہوں نے کرا تھا اس سے کہیں زیادہ ان کے ساتھ میں ہوگا اور دوسرا کیا ہے نا کہ جب آپ جھوٹے ہوتے ہو تو آپ کو پرائز پے کرنا پڑتا ہے اب وہ ہائڈ کر رہے ہیں وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے سوم ہیں لو سوم کو
0: سب کو پتا ہے
1: سوم کا مطلب کیا ہوتا ہے تو
4: we came to India and they looked us very well or because of that I got maximum education
0: sab kuch acche se hua
4: aur phir naukri ek se
0: acchi ji ji
4: ye sab
1: lekin aap dekhiye ki aap jaise wahan se nikle hain aaj jo balochon ke sath mohra hai young ladke ladkiyan koi galti nahi hai bomb bomb dale ja rahe
0: hain innocent log
1: aur duniya khamosh hai आपको कोई न्यूज नहीं मिलेगी केवल हम लोग तो ये सब चल रहा है अभी
2: काला जी को भी नहीं देते काला जी आप बताइए
5: ऐसा है कि माय फादर वाज नॉट ही वाज ओनली ए केमिस्ट हमें काफ़ी दिक्कत पड़ी जब जलंधर में थे तो हम लोग उसके बाद रोपड़ चले गए आई मेट वन ऑफ माय फादर्स फ्रेंड सन उनके साथ कुछ लोग मारे गए वो भी वहीं से थे जहाँ से हम थे ही वॉज अबाउट माई एज वी स्टडीड टूगेदर एंड आई हैव बिन लकी वेयर आर आई स्टडीड आई वॉज ऑन ए स्कॉलरशिप बिकॉज माई फादर कुड नॉट अफोर्ड इनिशियली एंड आई हैव बिन लकी आई बिन हियर नाउ एंड आई केम ऑन ए स्कॉलरशिप टू दिस कंट्री एज वेल
0: क्या बात है
2: नहीं तो एक बात मैं कहना चाहूँगा जैसे कि भारत और पाकिस्तान दोनों का विभाजन हुआ मुसलमान लोग थे यहाँ से भारत से पाकिस्तान गए कहते हैं उनके साथ अभी भी दुर्व्यवहार होता है उनको मुहाजिर कहा जाता है कहते हैं कि वो आउटसाइडर्स हैं उनको मंदी को लाइट
0: नहीं
2: आपको लगा कि भारत ने मतलब भारत माँ ने अपनी गोद में उनको आपको दिया और मतलब सम्मान दिया
3: बहुत एक्चुअली इंडिया लुक्ड आफ्टर अस वेरी वेल फ्रॉम डे वन जब हम लैंड किए तो अमृतसर में भी जैसे इन्होंने कहा था खालसा कॉलेज में कैंप बनाया था सब कुछ हमारे लिए किया तो गाँव से लोग बैलगाड़ियों में रोटियां बना के ले आके आके लोगों को खिलाते थे उसके बाद एजुकेशन फ्री कर दी
0: उस जमाने में भी जी हाँ जब इतनी दिक्कतें चल रही
3: गवर्नमेंट ने पूरी तरह से हमारे हमारी जो है ना देखभाल की और जितनी ये नौकरी की बात कर रहे थे तो वो नौकरियों के और हमारे देखो मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने हम रिफ्यूजी हमें रिफ्यूजी कहा गया शुरू में लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन बाद में कितनी हुई मनमोहन सिंह आई के गुजराल और वो देखो फिल्म इंडस्ट्री में भरे पड़े हैं
0: जी हाँ
3: वो सारे वहाँ से आए हुए हैं और अगर उनको एक्सेप्ट नहीं करते लोग तो ये भी उनको नहीं मिलता
2: और दूसरी बात ये है कि जो लोग वहाँ से आए थे उनको कॉर्नर हो गए थे भाई कुछ ना कुछ जीवन में करना है आगे बढ़ने के लिए
3: बिल्कुल
2: तो उन्होंने दुगने जोश के साथ किया
3: उन्होंने जो भी काम किए
0: बड़ी अच्छे से एक्सेप्टेंस भी मिली
3: जी और छोटे से छोटा काम भी उसको छोटा नहीं समझा किया है लोगों ने जमीन पर बैठ के बेची हैं सब्जियां बेची हैं सिर पे रख के टोकरी जाके केले बेचे हैं
2: नहीं पर आप बताइए अब कि इस बात का गम तो रहा होगा कि आपने सब कुछ जमा छोड़ छाड़ के आए तो कितने जमीनें छोड़ी घर बार छोड़ा वहाँ पे सामान भी छोड़ा सब कुछ लेके नहीं आओगे उसका गम रहा होगा
3: वो गम तो बिल्कुल रहता है जी और वो अभी
0: वो
3: तक
0: जाएगा
3: है
0: नहीं।
3: वो तो वो जख्म जो है वो हरे हैं अभी भी वो ये है कि अब पीढ़ियाँ आ गई हैं चलते चलते भूलते जाते हैं लोगों को नहीं पता है लेकिन
2: आप बोलिए इस बात के बारे में
5: मुझे यहाँ तक ध्यान है जब हम वहाँ से चलने लगे थे तो यही बताया जाता था कि हम लोग बस जाएंगे थोड़े देर में आ जाएंगे थिंकिंग एट दैट टाइम
3: परमानेंट नहीं था
5: लेकिन जब अपना पत्तोकी में रेलवे स्टेशन पर बैठे थे मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा याद है कि इट वॉज नॉट गुड सीन इट वॉज नॉट ए गुड सीन और फिर रास्ते में जब गाड़ी ट्रेन रुक गई रायविंड में मुझे नाम है स्टेशन का भी याद है लाहौर से थोड़ी देर ही पहले है ना बाद में है और अमृतसर से थोड़ी देर पहले है तो वहाँ पे भी और वेरी लकी कि उस वहाँ पे भी गोरखा था और नहीं तो वो सब मारपीट हो जाती है वहाँ पे
1: जी वैसे मैं फिर से बोलूँ कि अभी भी हो रहा है अभी कुछ साल पहले भी हुआ है कश्मीर में क्या हुआ है अभी भी क्या हो रहा बंग हमसे सीखने में हमारा जो है ना हमारा हिंदू का कहना मर जाओगे तो वाली बात है तो तो जैसे कि प्रोग्राम का होता है, हम आपका बहुत तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने इतना प्रयास करा, आप प्रयास ही है इस बरसात में आप आए हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे।
3: धन्यवाद
1: जी,
3: बोलने का चांस दिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो डॉक्टर साहब, हम विनर के नाम ले लेते हैं, तो हमने पांच जो हमारे जो एक एक टिकट है केदार जी के प्रोग्राम के लिए, तो उनका नाम है मोहिनी, रमेश जोशी जी, मिथिलेश जी, मोहिंदर गुप्ता जी, रेखा राजवंशी जी, और जो बंटवारा फिल्म का जो पास जाता है वो जसप्रीत जी को जाता है। हम आपसे संपर्क करेंगे प्रोग्राम के बाद में। और जी, प्रोग्राम से अब हम अलविदा होने वाले हैं इस सप्ताह के लिए।
6: You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@dapanradio.org.au.
7: आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम, हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम
8: 98.5 2000 FM।